0: ஹலோ, குட் மார்னிங், நமஸ்தே, சாஸ்கடூன். CFCR 90.5 FM பர் ஹம் ஆ கே ஹே ஆப்கே மனோரஞ்சன் கே லியே, ஆப் ஹி கா ப்ரோக்ராம் சங்கீத்மாலா லேகர் ஜோ ஆப் சுன்தே ஹே 90.5 FM பர். और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे साथ, यानी नीपा के साथ, और मेरा साथ देंगे
1: जी हाँ आप ही का दोस्त और होस्ट मनीष. जय श्री कृष्णा, जय श्री राम. क्या बात है,
0: जय श्री राम, राधे राधे,
1: राधे राधे. क्या बात है, जय लड्डू गोपाल जी की जय. तो हाँ, आज का दिन तो बहुत ही खुशनुमा दिन तो है ही क्योंकि मौसम के हिसाब से भी, लेकिन आज बहुत ही स्पेशल और बहुत प्यारा दिन भी है. हालांकि हम कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं नेपाजी हाँ, जन्माष्टमी की खुशियां मनाई जा रही हैं. कृष्ण जी का जन्म की जन्मोत्सव हो रहा है हाँ, सब जगह बहुत ही ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं.
0: कल भी हुआ था, आज भी कई मंदिरों में होने वाला है जी, कल भी होने वाला है. तो ये लॉन्ग वीकेंड है, तो साथ में जन्माष्टमी का भी पर्व है. तो हम सब यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म कितने दिनों तक हम अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं.
1: बिल्कुल. और आप लोग भी अपना, अगर कोई आपकी फरमाइश हो हमारे रेडियो के माध्यम से, यानी संगीत माला के माध्यम से अपनी फरमाइश आप सुनवा सकते हैं, चाहे वो कृष्ण जी के भजन से संबंधित हो, चाहे आप किसी के जन्मदिन या किसी की कोई भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए 3062425002 पर और हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजिए. जी हाँ
0: जी हाँ मनीष जी, तो आज के इस संगीतमाला में जैसे हमने कहा, हम रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स भी लेंगे और साथ में हमारे काना जी का जो बर्थडे है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और ढेर सारे गाने भी सुनाएंगे.
1: और आज एक और ओकेजन भी है, अब उसको हम बोलते हैं शायद इंडिया में टीचर्स डे
0: हाँ.
1: जो गुरु को समर्पित
0: तो
1: होता है.
0: तो ये तो हम सभी का दिन हुआ ना, क्योंकि हम सब में टीचर भरा पड़ा हुआ
1: राइट.
0: कि बच्चों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है. तो हम सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं.
1: चलिए और शुरू करते हैं पहले सॉन्ग से, और ये है कृष्णा भजन यशोमती मैया से, बोले नंदलाला.
0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से.

0: जी हाँ, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे कान्हा जी की, कन्हैया जी की। देव की माँ ने जिनको जन्म दिया और मैया यशोदा ने जिनको पाला। गोकुल का ग्वाला, वृंदावन का बांसुरी वाला, काली नाग के साथ लड़े, जालिम कंस को मारा, बाल अवस्था में ही जिन्होंने खेल ये खेला सारा। तो हमारे ये श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था आज से 5253 साल पहले।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और हमारे श्री कृष्ण भगवान जो है, हम जिसे प्यार से लड्डू गोपाल कहते हैं, गिरधर मोहन कहते हैं, कृष्ण कन्हैया कहते हैं, तो वो उनका जो जन्म हुआ था, जो हम सबको पता है कि वो देवकी जी और वासुदेव जी के वहाँ पे हुआ था, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो कारावास में हुआ था। और उस रात को अंधेरी रात थी और बहुत बारिश भी हो रही थी और उस वक्त हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ। तो मनीष जी, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी जन्माष्टमी की रात होती है तब बारिश होती ही होती है, भले थोड़ी तो थोड़ी, लेकिन उस वक्त हमेशा बारिश होती ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कल भी हमें सास्कटून में यहाँ कल से बारिश देखने को मिली है और आज भी आसार हैं कुछ हद तक के, बादल तो हैं ही हैं, शायद बारिश भी आज भी हो। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और बारिश से आगाज़ होता है, बारिश से स्वागत होता है उनके, जब वो पत होते हैं ना, कहते हैं भाव विभोर, और उनके जो
0: जब पूरा वातावरण होता है बहुत ही खुशनुमा होता है।
1: बिल्कुल,
0: ऑफकोर्स कृष्ण भगवान का जन्म होना था तब, तो धरती पर इतनी सब उनका जो उनकी जो जन्म लेने की जो पूरी एक उन लोगों ने संरचना बनाई थी वो इतनी बढ़िया से बनाई थी, क्योंकि कंस हमेशा उनके पीछे पड़ा हुआ था कि उनको पता था कि कंस का वध जो है वो देवकी का जो आठवां संतान होगा वो करने वाला है। तो इसी वजह से उनके जन्म लेना उनका ज़रूरी था, उनको बचाना ज़रूरी था। और इसलिए देखिए कैसी उन लोगों ने रचना करी थी कि उनका जन्म होते ही सारे जो पहरेदार थे वो सब सो गए थे और तब उनका जन्म होता है, और देवकी जी और वासुदेव जी को ना चाहते हुए भी अपने बेटे को नंद जी के घर छोड़ने जाना पड़ता है। तो ये सब देखिए पूरी रचना बनाई गई थी कि जिसको हम आज भी सोचे तो लगे कि उस जमाने में, उस वक्त में उनका प्लानिंग देखिए कि जब जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो उनका जन्म हुआ और वो नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं और फिर सुबह उनकी जो उनकी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो बुलाते हैं कि भाई उनके घर में यशोदा जी ने यहाँ भी एक बालक का जन्म हुआ था और वो जो बच्चे बदल देते हैं तो वही तो हमारे कान्हा जी थे और उनका बचपन नंद जी और यशोदा जी के यहाँ हुआ। और बड़े नटखट और शैतान हुआ करते थे कि हमेशा से उनकी उनकी जो मुस्कान होती थी कि उनका उनका रंग भी बड़ा सांवला था। इसलिए देखिए अभी हमने जो गाना चलाया उसमें कहा था ना कि हमेशा यशोदा मैया से पूछा करते थे कि मैं क्यों इतना काला हूँ, क्योंकि उनका जन्म हुआ था घोर अंधेरी रात में, तो उनका इसलिए उनका जो वर्ण था, उनका रंग था वो बड़ा सांवला था, लेकिन बहुत ही मनमोहन थे, बड़े मनमोहक थे। उनकी मुस्कान भी इतनी अच्छी थी कि वो जितनी भी मस्ती कर ले, धमाल कर दे, लेकिन अंत में तो सबको पता है कि उनकी एक मुस्कान और उनका एक एक चेहरा ही इतना सुंदर था कि कोई उनकी बातों में आ ही जाता था। तो और उनकी जो नटखट उनका स्वभाव था, वो मटकी फोड़ते थे, सब गोपियों के
1: माखन चुराते थे,
0: माखन चुराते थे और फिर एकदम इनोसेंट बन के बैठ जाते थे। और इसलिए तो यशोदा मैया से कितनी फरियाद शिकायत सब लेकर आते थे। तो ये जो है उसका एक नमूना है कि बड़ा नटखट है किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया।
1: सुनते हैं ये गाना।

क्या करे यशोदा मैया। और देखिए मनीष जी, कैसी बात है ना कि जब जन्म उनका हुआ था ये अपने नंद बाबा के और देवकी के घर, और उनकी उनका जो पालन पोषण किया वो यशोदा मैया ने किया। तो कभी कभी यही सवाल उठता है ना कि कन्हैया तू माता बोलेगा किसको, कन्हैया ओरे कन्हैया किसको गएगा तू मैया, जिनके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनको, या जिन्होंने तुम्हें पास पाल पोस कर बड़ा किया। तो उनकी दो दो माएँ थी, और वैसे ही होते हैं ना कि हम हमारा जो ख्याल रखते हैं उसे हम माँ का ही दर्जा देते हैं, पिता का दर्जा देते हैं। तो कन्हैया के लिए भी ऐसा ही था ना कि जिन्होंने भी जन्म दिया हो करेंगे तो दोनों को मैया ही।

0: अच्छा मनीष जी, आपको पता है कि ये देवकी जी और नंद बाबा को क्यों इनसे अलग रहना पड़ा? क्योंकि वासुदेव जी और देवकी के ये कृष्ण भगवान के साथ अलग रहना पड़ा इतने साल तक। उसके पीछे का एक रहस्य है कि देवहूति और कश्यप ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ का किया था अरेंजमेंट, तो उसमें उनको कामधेनु गाय चाहिए थी। तो कामधेनु गाय तो वरुण देवता के पास थी, तो उन्होंने वरुण देवता के पास से वो कामधेनु गाय को यज्ञ के लिए मांगा था। और मांगने के बाद यज्ञ तो खत्म हो गई, यज्ञ की पूर्णा होती होगी, लेकिन उन्होंने वो गाय वापस वरुण देवता को लौटानी चाहिए थी, वो लौटा ही नहीं। तो वरुण देवता ने कहा कि भाई तूने एक गाय को अपने बछड़े से अलग रखा है, तो तुम्हें इसका भुगतान भरना पड़ेगा। और क्योंकि गाय और बछड़ा कभी अलग नहीं करते, पता है ना। तो फिर यही हुआ कि जब देवहूति ने देवकी का जन्म लिया और ये जो कश्यप ऋषि थे वो वसुदेव जी बने, और उनके साथ में वही हुआ कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको ना चाहते हुए भी उनसे दूर रहना पड़ा। तो यही है कि ये कर्म जो होते हैं ना, ये पूरा कर्म का खेल है कि जैसे कर्म आप करते हो तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको उसकी भरपाई करनी ही पड़ती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए सुनते हैं अगला गाना, मैया यशोदा।
2: ये

0: Come on down to the Broadway Shoe Repair to snag some new Blundstones, the perfect boots for Saskatchewan fall and winter. We have all the classic Blundstone models if yours are a little worse for the wear. We have new colors and CSA-approved steel toes, plus a new composite midsole and toe for lighter weight and less fatigue at the end of a long day. At the Broadway Shoe Repair, we've been wearing, selling, and tuning up Blundstones since Y2K. Whatever your Blundstones need, from stitching and patching to insoles and more, we can help. Broadway Shoe Repair, 638 Broadway Avenue.
1: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway Shoe Repair. It's a Broadway Shoe Repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ, और मेरा साथ दे रहे हैं
6: मनीष जी। हाँ दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? आई बिलीव आप भी झूम रहे होंगे कृष्ण भगवान के भजनों में और उनके रासलीलाओं, उनकी जो जितने ही, अभी तो बहुत सी चीज़ें हमें जानने को भी मिल रही हैं, और नेपा जी ने काफ़ी ज्ञान भी हमें दिया है कि जो हमें चीज़ नहीं मालूम थी। वाकई में मैं अपने लिए खुद से बोलूँगा कि मुझे आज काफ़ी चीज़ पता चली, तो थैंक यू सो मच नेपा जी। और इसी तरह से होता है, देखिए आपको भी अगर ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, आप कॉल कीजिए 306-242-5002 पर, और हम वो चीज़, वो बात सब अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे, और जो सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं को, उनको भी हम ये सब चीज़ें बताएँगे। तो दोस्तों, फरमाइश जैसे कि हम बात करते हैं कि फरमाइशें आती हैं, तो हमारे को स्पेशल जो हमारी रेगुलर लिसनर है उनकी फरमाइश आई हुई है। जी हाँ, उनका
5: जी
6: किरण जी, वो हमें हमेशा जो है अपनी फरमाइश भेजती हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश का गाना, बनवारी रे जीने का सहारा।

कृष्ण भगवान की बात आती है तब हमें राधा जी को हम कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण भगवान का सबसे अलग रिश्ता था, जैसे यशोदा मैया से था, फिर राधा जी से था, अर्जुन से था, और हम सबके प्यारे जो है वो हमारा भी उनके साथ एक अच्छा सा गहरा सा रिश्ता होता है। और कृष्ण भगवान और राधा जी को हमेशा प्यार का प्रतीक बोला जाता है। जब भी प्यार की बात होती है तब हमेशा से राधा कृष्ण का ही जिक्र करते हैं हम लोग।

ಕೃಷ್ಣಕಾಂಜಿ. राधा कृष्ण का प्यार जो होता है, राधा जी और कृष्ण भगवान की बात करें तो आपको पता ही होगा कि उन दोनों में इतना प्यार था कि जब राधा जी को हमेशा से जलन हुआ करती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान थे, कान्हा था ही ऐसा प्यारा कि सब गोपियां भी चाहती थी कि वो हमेशा कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द रहे. और कृष्ण जी भी सबको उतना ही प्यार बांटते फिरते थे. तो मनीष जी, आपको भी पता होता है कि प्यार में जलन तो होती ही है, और जब आप जिसको प्यार करते हो, आप जिसको चाहते हो, अगर वो सबको प्यार बांटते फिरे तो जलन तो जाहिर है ही. और इसलिए राधा जी को बहुत जलन हुआ करती थी. और इसलिए देखिए, ये गाना मेरे जहन में आ रहा है तो सुना देते हैं ये गाना.

0: मनीष जी, हमें मैसेज एक आया था कि ये जो प्रोग्राम जो हम संगीतमाला हम सुनाते हैं तो वो कैसे हम सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम हमारे लिसनर्स को बता दें कि आप हमारी CFCR की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं, और अपने सेलफोन में भी आप अगर एंड्रॉयड हो या आईफोन हो तो वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप जहाँ पर भी होंगे आप जुड़ जाइए हमारे साथ और आप हमारा ये प्रोग्राम सुन सकेंगे।
1: बिल्कुल, कि अगर आप ट्यून इन 90.5 CFCR को नहीं कर पाते हैं अपने रेडियो पे, हालांकि वो सांस्केटून में अगर हैं तो वो आराम से अवेलेबल है, लेकिन आप ये इसकी ऐप डाउनलोड करके तो कहीं पे भी आप होंगे, यानी सांस्केटून या बाहर या इंडिया या कहीं भी कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप उसको हमारे रेडियो FM को सुन सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और या आराम से आपके जो भी फ़ोन आपके पास हो आराम से
0: फ्री
1: ये
0: में
1: ऐप,
0: ही आप
1: हाँ फ्री
0: डाउनलोड
1: ऐप
0: कर
1: है,
0: सकते हैं।
1: इसमें आराम से डाउनलोड हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं लेती है तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अपनी फरमाइशें आप हमें बिल्कुल सही भेजते रहिए 3062425002 पर। और ये संगीत माला है, हम आपको जैसा पहले भी बता चुके हैं, ये आप तक पहुँचा पाते हैं ICCA।

0: करता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं रहता था पहले इंडिया में, तो वहाँ पर हमारे बिल्कुल घर के दो घर छोड़ के ही राम मंदिर ना बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसको हम लोग इंतजार करते थे कि जन्माष्टमी पे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सुंदर सजाया जाता है और उसमें बहुत सी झांकियाँ उसमें लगाई जाती हैं, बहुत सा डेकोरेशन होती है, मतलब पूरी लाइटों से और पता नहीं क्या क्या तरीके के नए नए चीज़,
1: जो वहाँ का वातावरण
0: वो अलग ही होता है, और वहाँ लंबी इतनी लाइन लगती है उसे देखने के लिए कि हमारे घर के आगे से तक के तो ऐसा लगता है कि पता नहीं है क्या कौन सा मेला लगा है यहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर। और हम लोग भी निकलते थे और हर मंदिर में जाते थे आसपास के, उनकी सुंदरता देखते थे बहुत वाकई में।
1: छोटे छोटे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उन लोग मतलब कृष्ण भगवान का कपड़ा पहना, मतलब उनके कॉस्ट्यूम पहनाकर सर के ऊपर वो ही मयूर पंख लगाकर सब छोटे कितने सारे कान्हा हमें दिखाई देते हैं
0: और वो भी, और साथ में कई लोग जो है वहाँ पे प्रसाद बांटते हैं, तो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज खाने को मिलती थी, तो
1: पंजीरी
0: होती है मतलब और भी फ्रूट्स और
1: होती है
0: राइट,
1: तो बहुत ही अच्छा। मनीष जी कि आप हम जिनको लड्डू गोपाल कहते हैं, हालांकि उनके हाथ में जो दिखाया हुआ है वो लड्डू नहीं है, वो एक्चुअली माखन है, मक्खन होता है।
0: okay.
1: उनको मक्खन इतना इतना पसंद था और वो हमेशा से वही तो कहते थे ना, मक्खन की मटकी तोड़ते थे, क्योंकि वो खुद तो सिर्फ अपने मुंह पर लगा लेते थे, लेकिन उनके साथ जो उनके ग्वाले होते थे ना वो गरीब हुआ करते थे, तो वो उनको तो कभी उनके माता पिता देते नहीं थे, क्योंकि उनको माखन को बेचकर उनमें से जो भी आमदनी होती थी उससे उनका घर चलता था, तो यही मटकी फोड़ कर ये जो हमारे कान्हा जी थे वो अपने दोस्तों को मक्खन खिलाया करते थे। तो चलिए यही बात हम आगे दोहराते रहेंगे कि और छोटी छोटी बातें भी कहेंगे। और जब राधा जी और कृष्ण जी का जो मधुबन में जो रासलीला होती है, तो उसका जो माहौल होता है वो भी एक अलग लेवल का होता है, तो ये गाना बहुत ही सूट कर रहा है आज के इस टॉपिक के ऊपर।

मनीष जी, अगर कोई पूछे कि ये कृष्ण है कौन, तो मैं यही कहूँगी कि जिसके पास सुदर्शन जैसा शस्त्र होते हुए भी जो बांसुरी बजाते हैं वो है कृष्णा। द्वारिका जैसे बड़े राज के राजा होते हुए भी सुदामा जैसा एक गरीब मित्र है, वो है कृष्णा। मृत्यु के फन पर जो नृत्य कर सके, शेषनाग के ऊपर जब उन्होंने नृत्य किया था, तो वह है कृष्ण। और सर्वसमर्थ होते हुए भी किसी के सारथी बने, वो है कृष्ण।

0: मुरली की आवाज सुनी आपने
1: तो आज तो वाकई में मैं ऐसा लग रहा है कि बस कृष्ण जी के भजन ही सुनता रहूं आज पूरा दिन, बस मैं वही करने वाला हूं, क्योंकि वाकई में इतनी मधुरता इनमें ना कि अपने आप को महसूस करते हो वाकई में कि आप मतलब एक अलग वर्ल्ड में हो, डिफरेंट।
0: अभी देखिए बात करते हुए उनकी, मतलब ये जो गाने में बांसुरी की आवाज़ सुनी, तो मुझे एक यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि जैसे मैंने कहा कि राधा जी अक्सर उनको जलन हुआ करती थी कि कृष्ण भगवान हमेशा गोपियों को भी किशन जी का साथ चाहिए होता है, और हमेशा किशन जी हमेशा अपने साथ बांसुरी रखा करते थे ना, तो वो बजाते भी इतनी मधुर थे कि सब बांसुरी की सुर में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और जो भी काम थे वो छोड़ छोड़ के जहाँ पे भी कान्हा जी होते थे वहाँ पर सब पूरा गांव आ जाता था। तो एक बार राधा जी अपनी फ्रेंड ललिता के साथ गए थे, ललिता जी के साथ में, और फिर वो कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी मुझे तुम कन्हैया कि तुम बांसुरी जो बजाते हो उसमें क्या बड़ी बात है, मुझे दाओ मैं बजाता हूँ। तो कान्हा जी ने कहा कि नहीं तुम नहीं बजा पाओगी। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वो बांसुरी उनके हाथ से छीन ली, और वो उन्होंने कोशिश की राधा जी ने कि वो बांसुरी बजाए, लेकिन वो बांसुरी में से सुर लग ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को कहा, ललिता को, कि ये मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, ये लग क्यों नहीं रही है। तो फिर ललिता ने कहा कि क्योंकि तुम बांसुरी बजाते वक्त क्या बोल के उसमें हवा पूर रही हो। तो उसने कहा कि मैं कान्हा का नाम लेकर बोल, तो बोले नहीं बांसुरी को सिर्फ राधा का नाम सुनने की आदत है, क्योंकि जब भी कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते थे तो वो हमेशा उनमें राधा जी का नाम लेकर ही वो बांसुरी बजाया करते थे, और इसलिए जब राधा जी कान्हा का नाम लेकर बजा रही थी तो बोले नहीं बांसुरी को आदत नहीं है कृष्ण नाम सुनने की, वो हमेशा तुम्हारा नाम लेकर ही कृष्ण जो है कृष्णा वो बांसुरी बजाता है। और फिर राधा जी ने बांसुरी से भी पूछा कि तुम में ऐसा क्या खास बात है कि कन्हैया तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ ही रखता है। तो आपने देखी होगी ना कि बांसुरी की रचना कैसी होती है, वो अंदर से पूरी खाली होती है। तो बांसुरी ने वही कहा कि मैं अंदर से पूरी खाली हूँ, जैसे कृष्ण भगवान को मैं पूरी सरेंडर हो गई हूँ, जैसे उनको उसमें जो धुन पुरनी होती है उस हिसाब से मैं उनके साथ में चलती हूँ, इसलिए कि जब भी कान्हा के पास जाना हो तो आप सरेंडर होकर जाइए।
1: क्या बात है,
0: जो है बहुत ही प्यारी जो बात है जो हमें भी नहीं पता है कि जब भी हम ईश्वर पे भरोसा रखते हैं ना मनीष जी, कि जो भी है अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और हम उनके भरोसे अगर हमारा जो भी विश्वास होगा उनके प्रति, तो वो आके हमारा सारा काम आसान कर देते हैं। तो हमेशा वही ना कि बांसुरी में हमेशा धुन बजती है राधा जी के नाम की, और सा लोग बोलते हैं कि मीरा भी उतनी ही पावन पवित्र थी, मीरा जी को भी कान्हा जी से उतना ही प्यार था, लेकिन नसीब की बात है, कर्म की बात है कि हमेशा बांसुरी में से आवाज़ तो निकलती है राधा जी की ही।

0: TCU Place is proud to present Bahamas on September 24th. Bahamas follows his musical enthusiasms on his latest record, a loose-limbed indie pop set cut in a shed. Shot through with lyrical candor and a sense of play, My Second Last album winds from infectious country pop to modern soul via indie rock, hazy piano, pastoral folk rock, and more. Don't miss a magnetic evening with Bahamas on September 24th. Get your tickets today at the TCU Place box office or at tcutickets.ca.
1: I feel like pizza.
2: I feel like beer.
3: This does not have to be a paradox.
4: Who are you?
3: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
5: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
3: The gold, eh?
6: The Broadway Street Fair is back for its 43rd year on September 12th. Celebrate the beginning of fall with everyone's favorite street festival. Fun, family-friendly, and free. Discover something on every corner of Broadway Avenue and beyond. Browse Saskatoon's largest sidewalk sale. Enjoy cultural performances and live local music. Explore the Kids' Kingdom and Curiosity Corner. And relax at the Broadway Community Patio at Five Corners. The Broadway Street Fair, presented by BHP, on Saturday, September 12th. Visit BroadwayYXE.com for more.
7: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
8: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
9: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और मेरा साथ दे रहे हैं
10: नीपा
9: जी। हां, और हम बात कर रहे हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी की और उनके जन्मोत्सव की। और अगर इन सब की बातें हों और मटकी फोड़ का बात ना हो, यानी कि महाराष्ट्र की जन्माष्टमी की बात ना हो, तो महाराष्ट्र में तो अलग ही लेवल पे नेपा जी मनाई जाती है, जिसमें बहुत ही ऊंचे ऊंचाई पर मटकी को मक्खन डाल के उसमें
10: जब किशन जन्म हो जाने के बाद में दूसरे दिन दही हांडी का जो प्रोग्राम होता है, तो मुंबई में स्पेशली उन लोग सब इकट्ठा होते हैं, सबसे डोनेशन मांगते हैं और सबसे ऊंची उन लोग बिल्डिंग टू बिल्डिंग वो मटकी बांधते हैं और सब लोग पिरामिड बनाकर सब गोविंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो जो मटकी होती है उसको फोड़ते हैं।
9: बिल्कुल,
10: और उसको बोलते हैं गोविंदा। और वही हाँ। गोविंदा का जो अलग ही मजा होता है, उसमें कलर होता है, उसमें मक्खन होता है और पैसे भी उन वो मटकी के अंदर होते हैं।
9: और सबसे बड़ी चीज होती है टीम वर्क होता है बेसिकली, अगर उससे लोग सीखते हैं तो सबसे जरूरी होता है टीम वर्क, जिस में आप देखते हैं कि उसमें स्टेज जो सबसे नीचे होता है सबसे बड़ा ग्रुप होता है, जैसे जैसे ऊपर वो बढ़ते जाते हैं मंजिलें और वो इंसान की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती चली जाती है, जिससे वो एक पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड को और कैसे आप एक टीम को चला सकते हैं उससे वो पता चलता है, जितनी उनकी टीम बढ़िया तरीके से काम करेगी वो जीतते हैं।
10: टीम वर्क ऐसा नहीं है कि जो बंदा सबसे ऊपर है वो ही सबसे ऊपर होगा, नहीं, वो सबके साथ सहयोग से ऊपर चढ़ के जाता है ना। तो वहां पर चढ़ने के बाद वही देखना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने जनों ने साथ दिया है। और बस वही है कि ये भी एक पर्व है, सब इकट्ठा होके फिर वो जो भी पैसे मिलते हैं वो बांटते हैं और उसमें से पार्टी करते हैं। तो ये जो आपने बात कही, वो जो सब इकट्ठे होते हैं, जो पहले तो ग्वाले हुआ करते थे और यहाँ पे उनको गोविंदा बोलते हैं, तो चलिए सुना देते हैं बढ़िया सा यही गोविंदा का जो मटकी वाला गाना है, फिल्म आई थी खुदा का ही ये गाना है शायद।
9: मच गया शोर सारी नगरी रे।

0: मटकी तोड़ रहे।
1: गोविंदा की भी बात कर ली और यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ही एक प्यारा सा एक वाक्य याद आ रहा है कि हमने सबको पता ही है कि श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मयूर पंख धारण करते हैं। तो मनीष जी पता है उसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है कि हमेशा देखिए रामावतार में जब राम भगवान को राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण जी जब वनवास में थे तो चलते चलते माता सीता को बहुत ही प्यास लगती थी। तो उन्होंने श्री राम जी से कहा कि मुझे नाथ प्यास लगी है या मुझे पानी चाहिए। तो वहाँ पर एक मोर आया क्योंकि पता है जब राम श्री राम श्री माता सीता और लक्ष्मण जी चल रहे थे तो सारे आसपास के वन के पशु पक्षी उनके आसपास ही मिंडरा रहे थे। तो उतने में एक मोर उड़ के आता है और उन्होंने कहा कि भाई आप आगे चलोगे वहाँ पे ही थोड़ा एक जलाशय है आप वहाँ से पानी पी लीजिएगा। फिर वो मोर कहता है कि आपको रास्ता कैसे पता चलेगा, मैं तो उड़ कर जाऊँगा। तो मोर ने कहा मैं अपने मयूर पंख को रास्ते पर छोड़ता जाऊँगा, आप उसको फॉलो कर करके वहाँ पर पहुँच जाइए। तो वैसे ही किया, मोर अपने एक एक मयूर पंख को तोड़ के वो ज़मीन पर रखता गया और वो जलाशय तक पहुंच गए और वहाँ पे वो मोर इंतज़ार कर रहा था और राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण जी वही बात वो मयूर पंख को फॉलो करते करते जलाशय के पास पहुंच जाते हैं। और तब देखा तो जो मोर था वो उनकी उसकी आखिरी सांसें चल रही थी क्योंकि मोर के अपने पंख त्यजने की एक अलग सा समय होता है, लेकिन जब वो मयूर अपने आप ही वो अपने पंख को खींच खींच के निकालते हैं तो उसकी मौत निश्चित होती ही है। तो फिर राम भगवान ने मोर को अपने गोदी में बिठाया और वो पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ। तो मोर कहता है कि नहीं, मेरी आखिरी इच्छा क्या हो सकती है कि जगत की प्यास बुझाने वाले परम कृपाणु ईश्वर की प्यास बुझाने का मुझे जो अवसर मिला है उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री राम उससे कहते हैं कि देखिए ये तो तुमने मेरे ऊपर एक ऋण किया है तो मैं इसका ज़रूर उसको चुकाऊंगा और अगले जन्म में मैं तुम्हारा जो ये मयूर पंख है उसको मेरे सिर पर मैं
2: धारण करूंगा।
1: देखिए मोर ने एक कर्म किया उसकी मोर योनि में और उन्हीं का उसको बदला मिला के वो मोर का जो मयूर पंख था वो ईश्वर ने भी उसका ऋण है ना उसको चुकाया और अपने मुकुट में हमेशा से वो मयूर पंख रखते हैं। तो यही तो छोटी छोटी कहानियाँ होती है जो हमें पता नहीं होती है कि क्यों ऐसा था। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये वाक्य, इसलिए मैंने कहा हम हमारे लिसनर्स को भी बता देते हैं। तो अगला गाना आप क्या सुनाना चाहते हैं वो बताइए।
2: चलिए ये है मन बसिया फ्रॉम द मूवी तेरा नाम।

0: मनमोहना, देखिए हमारी मनीष जी, हमारे ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसे वाक्य बनते हैं कि जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन जी का भी कुछ रिश्ता ऐसा ही था कि कृष्ण भगवान और अर्जुन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही छोटी सी एक कहानी याद आती है कि जब एक बार अर्जुन बाहर बाल धोकर बाल अपना बाल धोकर वो आए और वो बाल सुखा रहे थे, और उतने में श्री कृष्ण वहाँ से गुजर रहे थे और फिर अर्जुन जी की आंखें लग गई। तो देखिए रुक्मणी जी को भी पता था कि कृष्ण भगवान अर्जुन अति उनको बहुत पसंद थे, अर्जुन जी कृष्ण भगवान को बहुत पसंद थे। तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा जलन होती है कि अपना अपने जो नात होते हैं वो किसके ज़्यादा करीब होता है, वो हमेशा वाइफ का ध्यान होता ही है। तो रुक्मणी जी भी देख रही थी, तो कृष्ण भगवान अर्जुन जी का सर अपनी गोदी में लेकर बैठ गए और वो एकदम उनके फेस के ऊपर एकदम झुक गए। तो रुक्मणी जी आई और पूछती कि ये नाथ, ये आप क्या कर रहे हो? तो कृष्ण भगवान अर्जुन जी का एक बाल तोड़ के उनको बोलते हैं, यहाँ पर कान रखो अपना। तो रुक्मणी जी कान रखती है, तो उसमें से हरे कृष्णा का नाम उनको सुनाई दे रहा था। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि अब पता चला कि मुझे क्यों ये अर्जुन इतना प्रिय है कि उसके बाल, उसके रोम रोम में से मेरा ही नाम निकलता है। तो वही है कि जब ये कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हो रही थी उस वक्त दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कि उनको हेल्प चाहिए थी कि कौन, क्योंकि कृष्ण भगवान की सेना बहुत बड़ी थी और कृष्ण भगवान ने एक व्रत दिया था कि वो शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे। तो दुर्योधन और श्री कृष्ण को मिलने आए दुर्योधन और अर्जुन, तो कृष्ण भगवान सोए हुए थे। तो अर्जुन जाके उनके पैरों के पास खड़े हो गए, क्योंकि दुर्योधन आके उनके सर के पास खड़ा हो गया, क्योंकि दुर्योधन में इतना घमंड पड़ा था तो वो पैरों के पास नहीं गया, और अर्जुन उनके पैरों के तरफ जाकर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान की आंखें खुली तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले देखा अर्जुन जी वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन को डर था कि वो सेना मांग लेगा तो फिर मेरे पास क्या लगेगा, क्योंकि सबको पता था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, कि मुझे आप सिर्फ मेरे मेरे साथ मेरे मेरे आप सारथी बनिए, मेरी ये इच्छा है। और दुर्योधन खुश हो गया कि चलो उनकी सेना तो मेरे काम लग गई। तो उनका जो सारथी जो कृष्ण भगवान बने थे, और देखिए वो भी एक गुरु ही थे, उनका रोल तब गुरु का ही था कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब उनको पूरा नॉलेज श्री कृष्ण ने ही कहा, क्योंकि अर्जुन को पता था कि मेरे सामने लड़ने वाले मेरे पिता माँ हैं और मेरे चचेरे भाई हैं, मैं लड़ाई करना नहीं चाहता। लेकिन देखिए सबको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और जिनका सारथी श्री कृष्ण हो तो उनका तो विजय होना लाजमी है।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना, गुरु के बगैर हम कुछ नहीं हैं, अगर वो हमें नहीं सिखाते तो आज शायद हम यहाँ तक नहीं होते। तो चलिए अगला गाना समर्पित करते हैं सब गुरुओं को, सब हमारे टीचर्स को, और ये मूवी है सर, जो आई थी 1993 में। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया।

0: चलिए देखिए मनीष जी, इतने अच्छे अच्छे गाने चलाने के बाद में वक्त आ गया है सबसे टाटा बाय बाय कहने का। सबको हमारी तरफ से जन्माष्टमी की शुभेच्छा, और जाते जाते हमेशा से यही कहेंगे एटीट्यूड रखना जरूरी है लेकिन ग्रेटिट्यूड का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय साईं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आप भी जन्माष्टमी पूरी अच्छे से मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं और सब प्यार बांटें, मिठाई बांटें एक दूसरे के साथ। अगले हफ्ते मिलेंगे।

0: कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मजा ले रहे हैं ना आप? इंडिया की याद ताज़ा कर देती है ये टाइम की गर्मी। मुझे पता है आज से 3-4 साल पहले ही शायद पूरे सीजन में एक बार 30+ जाता था, और लास्ट 2 या 3 साल से 30+ तो इजीली जा रहा है, और इस बार की गर्मी 36, 37, 38, ओह माय गॉड। किसी को भी ये लग नहीं रहा कि हम लोग अभी कनाडा में बैठे हैं। अगर बॉम्बे में होती तो मैं शायद ऐसा ही कहती।
1: ए, क्या बोलती तू?

0: करेंगे और क्या।
1: लगता है गर्मी के चक्कर में मैं आप सबको विश करना ही भूल गई हूँ। भाई जिसका भी बर्थडे था या आज है या आने वाला है, उन सब के लिए मैं एक गाना प्ले कर ही देती हूँ। चलिए सुनते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिल्म का नाम है सुजाता, एस डी बर्मन जी का म्यूजिक और आवाज़ आशा भोसले जी की।

गर्मी की बात करते हुए मुझे ये लगा कि चलो यहाँ मेरे लिए बैंफ और जास्पर मेरी फेवरेट जगह है, तो मैंने बैंफ का वेदर चेक किया। बैंफ का वेदर भी 36-37, उससे अच्छा तो हमारा माथेरान और महाबलेश्वर है। वो हसीन वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़े और मंद मंद जो हवा बहती है, और वहाँ पे हमारे पार्टनर के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हाथों में हाथ लिए मैं जो अगला गाना आपको सुनाने वाली हूँ, तो वो गाना एंजॉय करने का कुछ अलग ही एक मज़ा होता है, राइट? तो मैं आपको गाना सुनाने चाहती हूँ, फिल्म का नाम है अभिलाषा, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। गाने के बोल हैं वादियाँ मेरा दामन, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये गाना।

आर डी बर्मन जी का म्यूजिक था और मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। आप भी शायद कहीं दूर वादियों में अपने चाहने वाले के साथ पहुंच गए थे ना। अभी गर्मी की बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है और ऐसे में एक रिक्वेस्ट आई है जो इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक ला देगी। फिल्म का नाम है मंजिल और ये गाना बंटी जी सुनना चाहते हैं बड़ोड़ा से। गाने की बोल है रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बोल योगेश जी के और म्यूज़िक आर डी बर्मन का।

79 में मुंबई कितना खाली खाली सा लग रहा है, और ये गाना सुनते ही मेरे दिमाग में एक यही बारिश का गाना याद आ रहा है। फिल्म का नाम है ताल और गाने के बोल हैं नहीं सामने ये अलग बात है। पता नहीं ये बारिश का गाना सुन के मुझे एकदम ये गाना प्ले करने का मन कर गया है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको ए हरिहरन जी की आवाज़ में फिल्म ताल का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी तरह आप में से भी कई लोग होंगे जिनको ये गाना बहुत पसंद है। सुभाष घई की फिल्म है, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल माय फेवरेट नंबर।

हम बात करेंगे पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के मसले पर. हम बात करेंगे इस हवाले से नंबर्स, वजूहात, और सबसे जो ज़रूरी बात है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए वो है सॉल्यूशंस. हम इस टॉपिक के ऊपर हम फैमिली लेवल से लेकर नेबरहुड से लेकर हम जुडिशरी सिस्टम तक जो है वो बात करेंगे. और इससे पहले कि मैं पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड है ये किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए बिल्कुल नहीं है. ये इसलिए है कि क्योंकि डिसकंफर्ट जो है या डिसकंफर्ट से भागना जो है उसने इस मसले को इतना बड़ा कर दिया है हमारे माशरे में, अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें. तो जब तक हम ख़ुद इस पर खुल के बात नहीं करेंगे तब तक ये सब चलता रहेगा. और इसके अलावा एक और जो चीज़ है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है शुरू में, कि ये जो बैठक स्टूडियो का एपिसोड है इसमें हम कोई ग्राफिक डिटेल्स पर बात नहीं करेंगे. इसमें कोई ऐसी चीज़ हम नहीं बताएंगे जो किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल हो, कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके. महज़ आप ये समझिए कि ये बैठक स्टूडियो का जो स्पेशल एपिसोड है, ये जो पॉडकास्ट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है. तो लिहाजा हम इसको शुरू करते हैं. और इसके अलावा एक छोटी सी बात ये है कि जब मैं ये एपिसोड तैयार कर रहा था तो मुझे ख़ुद रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे सोशल सर्कल में जो हमारे दोस्त हैं, मेरे अपने सर्कल में जो लोग हैं, वो इस मौजू पर बात करने से काफ़ी अजीब फील करते हैं, इस चीज़ को मोस्टली अमूमी तौर पर बात करने से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. या तो कभी इसको हंसी में टाल दिया जाता है या फिर किसी और वजह से इस मौजू को ही तब्दील कर दिया जाता है. और यही चीज़ मुझे सोच में डाल गई कि हम एडल्ट्स जो इस बात को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, हम इतना अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो सोचे कि एक छोटा बच्चा जिसके साथ इस तरह का वाक्या पेश आया है या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है पास्ट में, तो वो अपनी बात किससे करे, कैसे करे. तो एपिसोड किसी मखसूस वाक़े की वजह से हम ये नहीं रिकॉर्ड कर रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक ज़िम्मेदारी है. तो बस उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने कहा कि बैटिक स्टूडियो में इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि हम बैटिक स्टूडियो में सिर्फ वही बातें नहीं करते जो आसान हों, बल्कि वो बातें भी करते हैं जिनको डिस्कस करना या आप तक पहुँचाना ज़रूरी है और हमारी ज़िम्मेदारी है. तो

तो लिहाजा जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक डिस्क्लेमर सा चलाया है, इससे आप सब लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाए और हम कोशिश करेंगे कि अगले 35-40 मिनट में हम इस टॉपिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हम पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ और इस हवाले से जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा बच्चे हैं, हम उनके नंबर्स पे बात करेंगे, स्टैट्स पे बात करेंगे, हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टैट्स देखते हैं, क्योंकि फीलिंग्स से पहले जो है, इमोशनल होने से पहले हमें फैक्ट्स समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में साहिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तकरीबन 1996 से पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से, डायरेक्ट रिपोर्ट से, और इनकी हालिया जो क्रूल नंबर्स हैं रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान भर में तकरीबन 3630 चाइल्ड अब्यूज़ केसेस रिपोर्ट हुए थे। और ये 2025 से जो पिछला साल था यानी 2024 के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। तो इस इशू में एस्केलेशन हुई है बाय 8%। तो ज़रा सोचिए कि इसका मतलब है कि रोज़ाना तकरीबन 9 से ज़्यादा बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और न्यूज़पेपर्स में आए हैं। जितने केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जितनी फैमिलीज चुप रहती हैं, वो नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। तो इन केसेस में सबसे जो ज़्यादा अहम कॉमन कैटेगरी थी वो अबडक्शन की थी, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो अबडक्शन केसेस हैं वो तकरीबन 1107 केसेस हैं। इसके बाद सोरमी तकरीबन 596 केसेस हैं, और फिर रेप जो कि 522 केसेस, और ये भी इसके साथ साथ आप सुने कि तकरीबन 116 केसेस जो हैं वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के थे, न्यू बॉर्न बेबीज़। 47% जो मुतासरा अफराद हैं या जो सिटीजन हैं उनमें 40% वो लड़के हैं

एंटर कर रहे होते हैं, जब वो फैमिली गैदरिंग्स में आज़ादी से घूमते हैं, जब इन्हें बड़ा हो गया है, अकेला जा सकता है, मतलब वगैरह वगैरह, ये वाला ट्रीटमेंट उनको मिलना शुरू होता है। तो ये वो वाली, ये वाला जो ब्रैकेट है एज का बच्चों का, 11 साल से 15 साल के बीच का, इसमें वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और अब हम सबसे अहम नंबर्स जो अब्यूज़ होते हैं वो कौन होते हैं, जो अब्यूज़र्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जो कॉमन कैटेगरी होती है वो इन बच्चों के या हमारे जो लोग हैं इनके अक्वेंटसेस होते हैं, यानी कि जान पहचान वाले लोग होते हैं। तो स्ट्रेंजर्स नहीं होते, अपने इर्द गिर्द के जो नेबरहुड में आपके लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, वो ज़्यादा नंबर्स के हिसाब से वो ज़्यादा अब्यूज़र्स में ज़्यादा आगे आते हैं, रिपोर्ट्स में आए हैं। क्योंकि ये पूरे एपिसोड का कोर पॉइंट है, तो इस चीज़ को हमें बड़ी संजीदगी से समझना होगा कि मसला ज़्यादातर बाहर के अजनबी लोगों का नहीं है, ये मसला अपनों का है, रिश्तेदार, नेबर्स, आपके बच्चों के ट्यूशन टीचर्स, फैमिली फ्रेंड्स, कज़न्स, अंकल्स, तो ये वो लोग हैं जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं। तो इस चीज़ की तरफ हमारा जो है वो ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और तवज्जो होनी चाहिए। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, और याद रखें कि ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2025 की। पंजाब से तकरीबन 73% आए थे, और सिंध में तकरीबन 21%, इसी तरह केपीके में जो है वो तकरीबन 4%, और बाकी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस तरह के इलाकों से तकरीबन 2%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सूबों में ये मसला कम हो सकता है, हो सकता है वहाँ पे रिपोर्टिंग ही कम हो रही हो। मगर इन सारे स्टैट्स में, इन सारे नंबर्स में एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट में 82% केसेस पुलिस में रजिस्टर हुए, जो पिछले सालों के मुकाबले में नंबर बड़ा है, बेहतर हुआ है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, रजिस्ट्रेशन इंसाफ नहीं है। तो बहरहाल हम इस एपिसोड में थोड़ी देर बाद हम जुडिशरी सिस्टम पर भी बात करेंगे, और जुडिशरी वाले सेगमेंट में इस पर हम जो है वो और डिटेल में जाएंगे। और अगर हम सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ से निकल के ओवरऑल जेंडर बेस्ड वायलेंस देखें तो 2025 में पाकिस्तान में तकरीबन 7,071 GBV केसेस रिकॉर्ड हुए, GBV मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो जो पिछले साल से तकरीबन 34% ज़्यादा है। तो इसमें मर्डर, किडनैपिंग, टॉर्चर्स, रेप, ऑनर किलिंग सब शामिल है। अकेले 877 तकरीबन जो रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे, और ये भी सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए। एक और जो चीज़ जो पाकिस्तानी इदारे साहिल ने हाईलाइट की कि वो थी ऑनलाइन अब्यूज़र्स की, जिसकी तरफ हम पेरेंट्स का या गार्डियंस का बहुत कम ध्यान जाता है। जो ऑनलाइन अब्यूज़र्स है नाज़रीन, ये भी ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। FIA की साइबर क्राइम एजेंसी ने ऐसी नेटवर्क्स पकड़ी हैं जो बच्चों को फेक सोशल मीडिया IDs से, आइडेंटिटीज से जो है वो ट्रैप कर रहे हैं, इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, और ये जो है ये एक नया तरीका है वारदात का, इस मसले का। तो अब प्रेडेटर्स जो हैं वो सिर्फ फिज़िकल स्पेस में नहीं बल्कि फ़ोन के अंदर भी हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे, जिनको हम वक्ती तौर पर खामोश करने के लिए हम उनको टैबलेट दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, तो वो दूसरी तरफ कौन बैठा है, कौन उनको मॉनिटर कर रहा है। हमारा इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। इसी वाले से ज़रा एक और एंगल से देखते हैं, तो अगर हम 2023 का डाटा देखें तो इस साल साहिल ने

2227 चाइल्ड अब्यूज़ विक्टम्स डॉक्यूमेंट किए थे, जिनमें 54% लड़कियां थीं। यानी 2023 से 2025 तक जो सिर्फ 2 साल में रिपोर्ट केसेस हुए, वो 2227 से बढ़कर 3630 तक पहुंच गई। और ये ट्रेंड क्लियरली अपवर्ड रहा है। तो या तो अब्यूज़ वाकई बढ़ रहा है, या फिर लोग पहले से ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। और ये डाटा ये बताता है कि मसला ये बिल्कुल छोटा नहीं है। और ये एक चीज़ जो बहुत अहम है, और ये जो चीज़ बहुत अहम है, यानी 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है वो एज ग्रुप भी 6 से 15 साल, और इसमें भी लड़के तकरीबन 593 केसेस और लड़कियों के 457 केसेस से ज़्यादा रिपोर्ट हुए। ये जनरल परसेप्शन को तोड़ता है कि सिर्फ लड़कियां ही टारगेट होती हैं, लड़के भी इतने ही वल्नरेबल हैं जितना लड़कियां हैं। बस इनके लिए रिपोर्टिंग और कम होती है, क्योंकि हमारे कल्चर में लड़कों के बारे में ये परसेप्शन पाया जाता है आम तौर पर कि इनके साथ तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो हो ही नहीं सकता वाली सोच है, ये बिल्कुल गलत है। तो अब थोड़ा सा हम इसको बिगर स्पेक्ट्रम पे देखते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जो असेसमेंट्स हैं पाकिस्तान को बच्चों के लिए, तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस असेसमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान को बच्चों के लिए लीस्ट सेफ कंट्रीज़ में से एक करार दिया गया है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है, ये एक ग्लोबल रेड फ्लैग है हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ये नंबर्स सुनने में हैवी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए कि हर नंबर के पीछे एक बच्चा है, एक फैमिली है, और एक ज़िंदगी है जो परमानेंटली बदल गई है। और यही वजह है कि सिर्फ नंबर्स पर रुकने की बजाय हमें समझना होगा कि ये आखिर हमारे मुआशरे में ये क्यों हो रहा है, ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं। अगले सेगमेंट्स में हम समझेंगे कि ये नंबर्स इतने बड़े क्यों हैं और इन्हें कम करने के लिए क्या हो सकता है। 2023 में नंबर्स कम थे, 2024 में बढ़े, फिर 2024 से 2025 में नंबर्स बढ़े, तो बतदरीज ओवर द पीरियड ऑफ दीज 2-3 ईयर्स एवरी ईयर ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी पॉडकास्ट का जो सेगमेंट 2 है, जो हमने इस सेगमेंट में हमने बात करनी है, इसकी जो बेसिक्स हैं, जो रीजंस हैं, आखिर ये माइंडसेट कहाँ से आता है, तो अब हम थोड़ी देर इन चीज़ों के क्यों पर बात करते हैं। ये मसला इतना वाइड स्प्रेड क्यों है, हमारे मुआशरे में ये इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। जो मुझे समझ में आती है बात नंबर 1 पे, वो ये है कि ये हमारे मुआशरे में जो खामोशी का कल्चर है, हमारे यहाँ सबसे जो पहला रिएक्शन होता है ऐसे सिचुएशन में जब कोई बच्चा कुछ बताए, तो वो ये होता है कि चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। और ये जो ये लोग क्या कहेंगे वाला कल्चर है ना, ये इतना पावरफुल है कि ये हर चीज़ को दबा देता है, चाहे वो बच्चे की सेफ्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो उसकी पूरी ज़िंदगी का क्यों फैसला ना हो। जब भी नाज़रीन आप याद रखें कि जब भी बच्चा कुछ बताने की कोशिश करता है तो इसे चुप करवा दिया जाता है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि वो सीख लेता है कि इसकी बात की
वैल्यू नहीं है। इस और इस और उस अब्यूज़र को भी पता चल जाता है कि ये फैमिली ऐसे मिसाइल को दबाती है, छुपाती है, तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है और ये सिलसिला बढ़ता रहता है। नंबर दो पे जो वजह मुझे समझ में आती है ये स्टैट्स और ये नंबर्स अब्यूज़र्स के बढ़ने की, इन केसेस के बढ़ने की, वो ये है कि इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माशरे में गलत तरीके से डिफ़ाइन होता है। हमारे यहाँ फैमिली की इज़्ज़त इस बात से जुड़ी होती है कि बाहर क्या परसेप्शन जाएगा हमारी फैमिली का, ना कि बच्चों की एक्चुअल सेफ्टी से। तो जब कोई केस सामने आता है तो सबसे पहले ख्याल ये आता है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हमारी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस बच्चे का, इस बच्ची का रिश्ता कैसे होगा, बरादरी में बात फैल जाएगी। तो विक्टिम की जो है वो हीलिंग, उसकी जो सेफ्टी है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी बन जाती हैं। और ये माइंडसेट इतना हमारे माशरे में डीप है कि कई बार फैमिलीज़ ख़ुद केस वापस ले लेती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी में जाने से उनकी फैमिली की, उनकी बरादरी की, उनकी जो माशरे में जो इज़्ज़त है वो ख़राब होगी और वो ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि अब्यूज़र्स जो ख़ुद इज़्ज़त नहीं छीनता, इसका छुपाना और साइलेंस जो है वो इज़्ज़त को छीनता है। नंबर तीन पे जो बड़ा अहम मामला है हमारे माशरे में वो ये है कि हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन जो है वो गायब हो चुकी हुई है। उसका हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं जाता। बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, सेफ टच है, अनसेफ टच है, ये इस तरह की क्या चीज़ें होती हैं, बच्चों को बेसिक बॉडी ऑटोनॉमी का भी जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि इन्हें कभी बताया ही नहीं गया था कि सही क्या होता है। और एडल्ट्स भी इस मौजू पर बात करने से कतराते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा यकीनन कि सेक्स वर्ड सुनते ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो कन्वर्सेशन प्रोटेक्शन के बारे में ही क्यों ना हो। हालांकि इस्लाम में भी जब तालीमात की बात आती है तो उसमें हमने अक्सर सुना पड़ा है कि उसमें कोई शर्म और हया नहीं है, बशर्त ये कि वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, उसका एक ख़ास मकसद होना चाहिए। तो नंबर चार पे जो आता है हमारे माशरे में जो पावर डायनामिक्स हैं और जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, वो भी मैं समझता हूँ कि इन नंबर्स को बढ़ने में एक क्लीदी किरदार अदा करता है। हमारे कल्चर में बड़े भाई, चचा, मामू, जो एल्डर्स हैं, जो बड़े कज़न्स हैं, इन्हें बच्चों पर एक ऑटोमेटिक अथॉरिटी हासिल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस। और बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, इनसे सवाल मत करो। और ये रिस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा है, लेकिन जब इस रिस्पेक्ट का फ़ायदा उठाया जाए और बच्चे को ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, सो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन, इट विल एनकरेज अब्यूज़र्स टू स्टेप इन व्हेन योर चाइल्ड डज नॉट हैव द एनकरेजमेंट टू से नो जस्ट बिकॉज के सामने वाला बड़ा है, तो ये मामला और ख़तरनाक बन जाता है। नंबर पाँच जो है वो ये है कि यानी सज़ा का जो मिलने का कल्चर है वो ख़त्म है। जब लोगों को पता होता है कि केस रजिस्टर होने के बाद भी एक
कन्विक्शन रेट इतना कम है, जब इन्हें पता होता है कि फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, जब इन्हें पता होता है कि बड़ा जो है वो सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम की बात करें, वो बड़ा स्लो है, वीक है, तो ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल बन जाता है इन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा सिक माइंडसेट रखते हैं। जब आपका ये एक फेयर सिस्टम होगा, एक जब मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला होता है, तो फिर उस हवाले से हम फिर इस मसले को बढ़ने से रोका जा सकता है। नंबर 6 पे जो है वो गरीबी और एक्सप्लोटेशन है। कई केसेस में इकोनॉमिकल वल्नरेबल बच्चे टारगेट बनते हैं, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, जो बच्चे असल में तो बच्चे होते हैं लेकिन अपने घरों के वो बड़े होते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे सड़क पर होते हैं, जिनके पेरेंट्स बिज़ी होते हैं दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, या बच्चों के ऊपर कोई मॉनिटर नहीं होता, उनको कोई ऑब्ज़र्व करने वाला नहीं होता, उनको मॉनिटर करने का वक्त नहीं होता उनके पेरेंट्स या गार्डियंस के पास, तो ऐसे में जो प्रेडेटर्स होते हैं वो ऐसे वल्नरेबल बच्चों को ढूंढते हैं। और जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और रिपोर्टिंग का चांस भी कम होता है, बल्कि अमूमी तौर पर जो है वो ना होने के बराबर होता है, तो ऐसे जो हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द फाइनेंशली इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल बच्चे हैं वो ज़्यादा टारगेट बनते हैं। नंबर 7 पे जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि ऑनलाइन जो स्पेस है उसका कंट्रोल ना होना। अब बच्चों के हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, तो प्रेडेटर्स अब ऑनलाइन ग्रूमिंग करते हैं। पहले वो दोस्ती करते हैं, फिर ट्रस्ट करते हैं, फिर ब्लैकमेल, और ये जो है पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि इनका बच्चा किससे बात कर रहा है, स्क्रीन के पीछे कौन है और किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। नंबर 8 पे जो इस चीज़ को फ़रोग देती है, इन नंबर्स को बढ़ने में, वो मैं समझता हूँ कि हमारी मज़हबी और ये मज़हबी और कल्चरल जो गलत तशरीह है वो है। कई बार लोग मज़हब का गलत सहारा लेकर बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों की हर बात मानना फ़र्ज़ है, चाहे वो बात कुछ भी हो। ये टीचिंग अपने आप में ही गलत नहीं है, बल्कि जब तक ये रिस्पेक्ट तक महदूद हो, लेकिन जब ये ब्लाइंड ओबीडियंस में बदल जाती है ना, तो जहाँ बच्चे को सवाल करने का हक ही नहीं दिया जाता, तो यही चीज़ प्रेडेटर्स के लिए एक आसानी लेके आती है इस सारे मामले में। तो असलन इस्लाम ख़ुद बच्चों के हकूक और इनकी हिफाजत पर बहुत ज़ोर देता है, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिसेस में ये असल पैगाम कहीं दब जाता है, कहीं पीछे रह जाता है। और फिर जो है वो आता है नंबर 9 पे, जिसमें मेंटल हेल्थ है और जो थेरेपीज़ हैं इनका तक हमारे मुआशरे में तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता भी है तो हमारे यहाँ इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक स्टिग्मा है, उसको एक मतलब मायूब समझा जाता है, उसको बिल्कुल ही पागलों वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बच्चे को साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो ये जो सोच है ना, ये सर्वाइवर्स को प्रॉपर हीलिंग होने से, हीलिंग करने से महरूम रखती है। तो जब ट्रॉमा जो है वो इन ट्रेंड रह जाता है, तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ, जब ट्रॉमा जो है वो अनट्रीटेड रह जाता है, तो इसका असर सिर्फ इस बच्चे पर नहीं, बल्कि इसकी पूरी ज़िंदगी पर, इसके फ्यूचर प्लानिंग पर, और उसकी लाइक जस्ट फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जो है वो उसके ऊपर पड़ता है।
باقی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو نمبر 10 پہ جو میرے سامنے ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میڈیا اور انٹرنیٹ میں اور انٹرٹینمنٹ میں اس سارے کانسیپٹ کو نارملائزیشن جو ہو رہی ہے اس سے بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے ڈراموں میں جو یہ چیزیں اور انٹرٹینمنٹ میں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو مذاق کے طور پر نارملائز کر دیا جاتا ہے نا، تو جب بچے ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، نہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور نہ وہ پہچان پاتے ہیں کہ کب کس نے ان کی باؤنڈری جو ہے وہ کراس کی ہے. یہ سب فلٹرز جو ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں جہاں ابیوزرز ابیوز ہوتا ہے اور چھپایا جاتا ہے اور پھر رپیٹ ہوتا ہے. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب تک سسٹم اور سوچ دونوں نہیں بدلیں گے، یہ سائیکل جنریشن در جنریشن چلتا رہے گا.

वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप मैजिक स्टूडियो देख रहे हैं और मैं हूं आपका होस्ट तौसीक अज़ीज़। तो अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं पॉडकास्ट को क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूं। तो नाज़रीन, आज हमने बहुत हैवी लेकिन बहुत ज़रूरी बात की है। हमने देखा कि नंबर्स कितने अलार्मिंग हैं और रोज़ाना डेली बेसिस पे 9 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अब्यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स और रिपोर्टेड केसेस में। और हमने देखा है कि मसला अजनबियों का भी है, मगर इतना नहीं है जितना हमें ज़्यादा अटेंटिव और अलार्म रहना चाहिए अपनों से। तो हमने देखा कि साइलेंस और इज़्ज़त का गलत कॉन्सेप्ट, सेक्स एजुकेशन की कमी और वीक जस्टिस सिस्टम, ये सब मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो बना देते हैं जहाँ ये क्राइम फैलता फलता फूलता है। लेकिन हमने सॉल्यूशंस भी देखे हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की है। फैमिली लेवल पर खुले कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए, ओपन कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, वहाँ से लेकर हमने जुडिशरी रिफॉर्म्स तक और फिर सोसाइटी की सोच बदलने तक जो है वो हमने बात की है। अगर आप इस एपिसोड से सिर्फ एक चीज़ लेकर जाएं तो वो ये हो कि अपने बच्चों की बात सुनें, इन्हें ना कहना सिखाइए, और अगर कोई बच्चा आपको कुछ बताए तो चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो सुनना, उस वक्त उस पर यकीन कीजिए और उसके साथ आप खड़े हो जाएं, क्योंकि उस लम्हे में आपकी जो सपोर्ट है वो उसकी आने वाली ज़िंदगी को बदल सकती है, उसको मज़ीद दिलेरी बख्श सकती है। तो ये एपिसोड किसी को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये इसलिए था ताकि हम सब थोड़ा ज़्यादा और बेहतर तरीके से अवेयर हो सकें। ये मेरी ज़िम्मेदारी थी इस तरह के टॉपिक को भी डिस्कस करना, और अपने घरों में, अपने मोहल्लों में और अपने मुआशरों में अगर आप ख़ुद इससे रिलेटेड जो है वो किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप ख़ुद ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, तो हम कलेक्टिवली फिर इस तरह के इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।